चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कदम

अपनी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए नन्ही चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में फिर किसी को पकड़ा जकड़ा किसी को पल भर में चली ये फौज हमारी रे चल चलम चल चलम चल छिड़ी लड़ाई भारी रे चल चलम चल चलम चल।

0: You are. Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

ये कालज का जमाना, ये हंसना हंसाना, ये बनना बनाना, बनाना बनाना, ये दिन दिन

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुज

अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, जरूर अफसोस करोगे। स्टेविन बेन की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। जोहेब हसन मैं जाना।

जिंदगी से न जाना, क्या क्या गीत है। उजाला रेडियो पर इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए उजाला.nl।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदना उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, हमारे प्यारे सुनने वालों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड आदाब। करीबन 7 मिनट व्यतीत हो चुका है 3:09। हमेशा की तरह जिनका घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप एक हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जब कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप हर की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, यहां से अब हम आरंभ करेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। और अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203639009 पर। मैं हूं सुभाष शिव गोविंद और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को आज शाम का प्रोग्राम में प्यार से दुलार से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम, खुद मिनख अलमाउ।

0: वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा, यहां से हम आरंभ करते हैं। ये पहला बैठे गाना जो आप लोग सुनेंगे, तो गाने वाले ये होंगे स्वर्गीय रामदेव चैतु जी।
1: हिंदू पुरुष के देश में है मेरा नाम कबीर, है जीवन मुक्ति पाई के बहुमत सब गतिये शरीर। बड़े बड़ाई जात है अब रोम रोम अहंकार, बोली से पर को नहीं अब चारों वर्ण समान। आए गुंजो सब दल खाई तब पाई कुछ ज्ञान, अंत समय सत्संगत में छूट जा

0: शाबाश शाबाश। और इस तरह से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड अब की बार चलिए इन्हीं के आवास में एक और गाना प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और इस गाने को मांग करने वाला है आओ मेरे में भाई मनोज मुंगार।
1: सच कहा तकदीर की है लिखा बदलता है नहीं, छान डाला देश दुनिया फिर दिल बहलता।

वेल शाबाश शाबाश। और इस तरह से ये बैठक गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और स्वर्गीय रामदेव चैतू जी की आवाज में यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, गाना सुनने से पहले इतवार के मई साल अतवार के सब कोई अपन घर के काम करे है, कोई कोई कपड़ा धोए, कोई कोई कपड़ा तरी करे या वेल अचानक स्ट्राइक बन स्ट्राइक चल माओ। मैं तो यू आर उजाला रेडियो के साथ अम सरम सही तो उसमें बैनी राम सरन भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने।

0: शाबाश शाबाश, बोले नजर झरवाया, बोले ए बाल मा वेल बिसाल यार
1: नजरिया।
0: और देखा जाए अशोक भी प्रोग्राम को सुने हैं द मालखा में।

शाबाश यार, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, सुनील राम सुंदर के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। वेल यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम एंड चलिए अब की बार होफदोरप शहर में आनंद मंगरू प्रोग्राम को बढ़कर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम। आई बॉय चलन दे।

शाबाश शाबाश यार सज्जन मोरे खेलत अमुआ दी सैया। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो आलमेरे में शहर में जहां पर इस वक्त माला मुंगार जी भी प्रोग्राम को बारीक करके सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

अल तुझ बिन सोनी जगरिया आ जा रे वो सनम अविशर कृषम छेदी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। अब की बार देखा जाए पियानो शहर में जहां पर श्रीमान राम सुख जी प्रोग्राम को सुने हैं।

वल्ली शाबाश शाबाश, बोले तेरे द्वार खड़ा भगवान, बोले भगत में भगत में भर दे झोली। आई सरस्वती द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवास में गाना, जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने ब्रेडा शहर में, जहां पर इस वक्त श्रीमान और श्रीमती बिहारी जी प्रोग्राम को बरकर सुने, तो ये गाना को मांग किए हैं एक बार फिर द किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

शाबाश शाबाश यार, बोले प्यारा लगे ओ सजनी, बोले प्यारा लगे। इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो दरहाक शहर में इंदिरा और हमारे स्वाखर जी प्रोग्राम को बढ़ के सुने तो

0: शाबाश शाबाश बोले हाफिज खुदा तुम्हारा। और इस तरह से जयंत महावीर के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा इतवार का शाम। एंड चलिए इस बार बैठ गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो अलमेरे शहर में जॉन घेरा के लिए गाना पेश है।
1: ए, आए अरे

0: है, चलिए हमारे प्यारे सुनो लो, रिक्लाम से पहले एक और बैठे गाना हो जाए तो अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।
1: आई बॉय।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोग प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं हर इतवार की शाम में 3 बजे से। और चलिए आखिरी भाग, करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चुका है 4:11। दूसरा भाग और आखिरी भाग बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए एकदम बेल के शहर में जहां पर सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, घर के काम कर रहे या बेल घर सफा कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों के लिए, और ये गाना भी तुम्हारे लिए सुनीता।
1: मेरा पास चलो, मेरा पास रानी, चलो मेरा पास।
0: घर हर सौद करे, कपड़ा तरीके रहे, वेल हमारे साथ।

वेल शाबाश शाबाश, देर ना करो मोरे रानी, चलो हमारे साथ। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड देखा जाए लई सफे इन शहर में, जहां पर सानू जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, वो हमारा सोका नस्त्राई का

0: जितना जल्दी हो सके तू केमड़िया खोल दे, प्रीतम लागे तुमसे यार। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी। अब की बार चलिए गाना को मांग करने वाले हैं फैंस सपोल्डर में एमी जी।
1: कलम कहे की आ, कलम कहे की हम हैं जंगली की खरी, अगर सोचो तो हम हैं दौलती के घरे, पैसा जहान में तो नुकसान नगीन है, पैसा नहीं तो आदमी कौड़ी के तीन है, ठनठनाटन पे सारी दुनिया डोले रे,

राजा आ पैसा की के पल्ले से बाबू बना फिरे तू राजा, पैसा ही के झलक दिखा के काहे उनसे आ जा। हाथ पकड़ के सैया जब तेरा मुखड़ा खोले हो।

शबा चादर बिछाओ बलमा इंदर लगे सोई रहना अवसरों से करिशम छेदी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक और ऐसा ही बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

और देखा जाए अमसलम सहित उसमें देखा जाए रंग चिकन एंड सत्या एंड रवि प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे इस तरह से

हमें हमें हमें हमें रात भर हमें रात भर सूते ना देवी अवसर से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने द किंग ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह सिवना जी। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए भाई राशिद, चलिए ये गाना तुम्हारे नाम भैया राशिद के लिए।

हाउ शाबाश शाबाश, इस तरह से उमराव सजल सुजल क्या बात उसमें गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए हार्लेम शहर में जहां पर सीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। तो चलिए अब की बार गाना जो आप लोग सुने एक बार फिर उमराव सुजल क्या बात उसमें जबल उजाला रेडियो।

आई बोई करे जो मैं हाय राम बड़ी दुख दीना आई सर से सुजल उमराव के वंश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड अब की बार गाना को मांग करने वाला है देखा जय सिंध अब कहना तो गाना मांग के अपना भाई सत्तार के लिए हम सर हम सही तो उसमें

स्वर्गीय सनातन जी के आवास में सुतमेर में संता प्रोग्राम को बड़ी सुने।

वाला छोटा सा झलक हम सांता के लिए सुना दे ली और देखा जाए दीवन शहर में ज्ञान भी प्रोग्राम को बैठ के सुने एंड भाई विजय तो ये गाना आप लोग के नाम और हमारे प्यारे सुनने वालों देखा जाए घड़ी तरफ ये वेल टेमो इतना हल्दी दो यार एक आखिरी बैठेगा ना।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, इसी गाने के साथ हम आप लोग से इजाजत चाहेंगे। अपना इतवार का शाम और इतवार का रात्रि आप लोग मोई से बीताइए, मोई से रहिए। जो चीज आप लोग करियो बस प्यार से करिए एंड दुलार से करिए, नहीं तो ना करिए यार। अगर कोई से आपको प्यार है तो बोल देना यार कि हमें तुम्हें प्यार है यार, हमसे तुझसे प्यार है, या फिर नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आप लोग मोई से रहिए और जो जी आप लोग करिए मोई से करिए, मोई से खाइए, मोई से पिए एंड मोई से रहिए। कल तू ना देख ले, कल हम ना देख ली, यहीं पर फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। आप लोग मोई से रहिए। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज।

0: अदनान समी और आशा भोसले जी, इन दोनों की आवाजों में गीत को आप सुने। और अब फिल्म खामोशी का गीत पेश है।
1: ना, जो सच हुआ है मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

मोहब्बत, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। सबसे पहला सिलेक्शन हमारे जरिए पेश की गई है उजाला रेडियो से। हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज की जा रहे हैं स्टूडियो से। हम पता नहीं आज हम आपको क्या क्या और सुनाने वाले हैं, देखेंगे।

the rocking and sensational leader in broadcasting, you are Ujala Radio का पैगाम में कुछ मिले जुले संगीत पेश किए जा रहे हैं और ऐसे में हो जाए सन 1977 का फिल्म 1977 का फिल्म फिल्म का नाम चरणदास और इसी फिल्म से आशा जी और रफी साहब की आवाज कुछ सोच के प्यार किया है।

शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और मेरिड क्वीन आशा जी की आवाज में आर डी बर्मन के साथ पर आप सिलेक्शन सुने हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। सन 1977 का फिल्म, 77 आपको मालूम है ना, 77। सन 1977 का फिल्म, 1977 का फिल्म, आशिक हूँ बहारों का, आई एम इन लव।

फिल्म का नाम याराना, द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोरदा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

फिल्म याराना से आप सुने हैं किशोर दा की आवाज। छूकर मेरे मन को किया तूने किया इशारा। यू आर के फोन का नंबर आप नोट कर लेना, आज नहीं तो कल के वास्ते आपको जरूर काम आएगा। फोन का नंबर है 02-409-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते द रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल लीडर इन ब्रॉडकास्टिंग उजाला रेडियो। दिस कुकिंग बपिल हेरी की आवाज। वारदात फिल्म का नाम, सन 1981 का फिल्म वारदात से बपिल हेरी की आवाज। देखा है मैंने तुझे फिर से पलट के,

0: La la la la la la la la la la la la.
1: देखा है मैंने तुझे फिर से पलट के, डिस्को किंग बपी लहरी की आवाज. वारदात फिल्म का नाम है, स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो.
2: माइके नहीं तू मत, माइके माइके मत जाइयो. ए टोनी फर्नांडिस बेबी.
1: यही हाल होता है जब मियाँ बीवी में घर में कुछ अनबन होता है तो मियाँ कहता है, ए जानेमन तू मैके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान.

0: न जाना तुम के मत जइयो
1: मत जइयो
0: बिग बी की आवाज
1: मत जइयो
2: Music.
0: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: You are. You are.
3: The most sensational and
4: the best.
5: The best.

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है। संगीतकार राहुल देव बर्मन, खुद राहुल देव बर्मन की आवाज और साथियों की आवाज में। दिल लेना खेल है दिलदार का। स्टेशन है UR उजाला रेडियो। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। हम आपसे अभी फिर मिलते हैं।

सुनने वालों, यहीं से उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया का दूसरा भाग आप लोग सुनेंगे, और इसमें पहली गजल जो होंगे तो यह है मेहदी हसन की आवाज में।

जगजीत सिंह से आप सुने। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। गीत और गजल की दुनिया।

0: भूल जाना था तो फिर अपना बनाया क्यों था,
1: बनाया क्यों था।
0: गायक अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सुनिए।

और गजल अभी आप सुने कि ये दर्द तुम ही ने दिया है तो कोई बात नहीं, कीर्तिदन गढ़वी से। आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में पेश है आखिरी गजल।

और ये उजाला रेडियो है। इसी के साथ सुनने वालों आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम उजाला रेडियो पर जो हम बना रहे हैं, इसमें गीतों और गजलें, बातें कम। बातें कम इसलिए ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम को सुन सके। और ये तो आपको पता ही है कि आपके साथ साथ इस प्रोग्राम को और हजारों लोग सुनते हैं, और इसलिए हम आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप जो सुन रहे हैं

तो बेहतर है कि मर जाए हम। पंकज जो नाना जगजीत सिंह, हाँ जगजीत सिंह की आवाज़ में इस सुंदर गज़ल को आप सुने। सुनने वालों अब मेहदी हसन की आवाज़ में सुनिए।

0: मेहंदी हसन की आवाज़ में इस सुंदर गज़ल को आप सुने। उजाला रेडियो है ये और प्रोग्राम का नाम गीत और गज़ल की दुनिया।
1: दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे, फिर जैसी जैसी आपकी फरमाइश रहेगी।

दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जगजीत और चित्रा सिंह इन दोनों की आवाजों में लाइव रिकॉर्डिंग को आप सुने हैं।

कल जुदास जी हिस्सा लिए आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। और एक बार फिर अब मेहदी हसन को सुनिए एक लाइव रिकॉर्डिंग में।

मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मेहदी हसन की आवाज़ में एक लाइव रिकॉर्डिंग में आप इस गज़ल को सुने। सुनने वालों, उजाला रेडियो है ये, और प्रोग्राम का नाम है गीत और गज़ल की दुनिया।

की तरह लब खोल कभी, फूलों की तरह लब खोल कभी और खुशबू की जुबां में बोल कभी। जगजीत सिंह की आवाज में आप इस गजल को सुने और अब हिस्सा लेंगे चंदन दास जी।

0: मैंने जो कह दिया लड़का होगा तो लड़का ही होगा।
1: भाई मैं जो कहती हूँ लड़की होगी।
0: ओहो भाभी अब तुम्हें समझौता कर।

लल्लू ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण, तू क्यों रोता चंद्र भान, माँ ने पीटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान, ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले।

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मैं

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे